0: Our boxers, Lovlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lovlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asian. With these wins, Lovlina and Parveen joined the legendary AMC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asian gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague Siddharth Vishwanathan has spoken to the star boxers. Listen in.
1: It was an incredible pleasure to welcome Lovlina Borghain, gold medalist and belated happy birthday, Lovlina. So, Lovlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath aap ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To, ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
2: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था. सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन. सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा. और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था. और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार. और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
1: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
2: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हो, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है. तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है. और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है. एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
1: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश वुमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
2: हाँ, बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है, लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
2: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपनी स्पोर्ट्स

0: को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट. एम इज LA 2028 सेम. उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. लवली ना बोरगोइन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा इन द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर. एंड बॉय ओ बॉय, इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट. परवीन, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
2: थैंक यू सर.
1: परवीन, गोल्ड मेडल 2026, ब्रॉन्ज मेडल मिला था आपको 23 में, लेकिन हालात हम जानते हैं वो कैसा हुआ था. ब्रॉन्ज मिला था लेकिन वेयर अबाउट्स की फेलियर की वजह से वो मेडल चला गया. उसके बाद आप लंबे समय तक आप रिंग में आए नहीं. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते. वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
2: सो जो लास्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
1: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
2: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर वन थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
1: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
2: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स कि हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
1: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
2: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है. तो लाइक वो मेडल काफ़ी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
1: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट. आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गाँव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं है तुरंत आप ट्रेनिंग
2: तो
1: करेंगे?
2: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल. बट ये प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना. अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है.
1: बिल्कुल. सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल. मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं. सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए. सो देयर वी हैव इट फोक्स.
3: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
4: You are watching India Today.

0: All eyes are on the by polls in Tamil Nadu on Tuesday. The campaign has turned personal. Star campaigners are in the field before the silent period kicks in. Tensions grip Dharapuram after AIADMK cadres staged dharna outside the Dharapuram police station following the detention of their rural district secretary Selvakumar for alleged cash transport. AIADMK workers and former legislators gathered at the site raising slogans and alleging that the police were acting in favour of the ruling TVK. AIADMK also targeted Vijay and chanted the name of actress Trisha. Meanwhile, a complaint has been filed with the poll panel against Tamil Nadu LOP Udayanidhi Stalin for bringing children to his poll rally. A massive war of words has broken out between DMK and TVK following Stalin's shocking body-shaming comment on TVK candidate Satya Bama.
1: Makkalana, ningale, ippo enna solli koopidringa? Petti Bama. இன்னொன்னு இருக்கு, பல்டி பாமா. எப்படிதான் அந்த உருவத்தை வச்சுட்டு பல்டி அடிச்சான்னு தெரியல.
0: Chief Minister Vijay slammed the DMK chief, accusing him of mocking a woman. Vijay even lashed out at opposition leaders and asserted that he would not tolerate any ill speak about any woman.
2: Stalin sir vandaru, enna pesthu ponaru, nama sagodari Satya Bama avargala adu kaadu kuduthe kekka mudiyadhu. என்ன பத்தி என்ன வேணாலும் பேசுங்க, நான் அதை தாங்கிக்கிறேன், நான் அதை பொறுத்துப்பேன். ஆனா நம்ம சகோதரிய பத்தியோ, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அம்மா அக்கா தங்கிகளை பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்.
0: As the war of words rages on, by-elections in Madurantakam and Dharapuram assembly constituencies will be the first test for the Vijay government after the poll win in May. Bureau Report, India Today.
3: A Fly Dubai flight bound for Israel, a sudden blow in the cockpit and a co-pilot allegedly trying to crash the plane. Indian captain Smith Machar fought back, seriously injured and saved the flight. Here is a special report on why Benjamin Netanyahu is calling Captain Machar a hero of Israel.
4: Routine flight, calm skies, then a body blow. Captain Smith Machar, the pilot of Israel-bound Fly Dubai flight FZ1073, has revealed chilling new details of the terrifying moments inside the cockpit. Speaking on a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Machar, who was grievously injured, said the flight had begun normally. Smith said he was looking toward the front of the cockpit while his Omani co-pilot Al-Hamami prayed behind him. And he didn't look at him out of respect. Then, after several minutes, a heavy blow struck the back of his head. His first thought, the aircraft itself had suffered catastrophic damage. But the blows kept coming. That was when Machar realized his co-pilot was attacking him with the crash axe kept in cockpit for emergencies. The assault left his vision blurred, yet he sensed the aircraft plunging sharply. Captain Machar managed to open the door once. However, the radicalized Hamami shut the open door. Fighting through the pain, he mustered one final push to open the cockpit door, allowing passengers to regain control of the aircraft. One man, one door, one final push.
5: I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm going to die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control and...
4: Netanyahu called the Indian pilot a hero of the entire world for foiling the co-pilot's alleged attempt to crash the flight. Machar is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. The Israeli Prime Minister also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
6: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
4: Had it not been for Captain Smith Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today.
3: At the Asian Games, India's star boxers Lavlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lavlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asiad. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary MC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asiad gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague Siddharth Vishwanathan has spoken to the star boxers. Listen in.
7: It gives us incredible pleasure to welcome Lavlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To, ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
8: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई वो भी मेरे बर्थडे के दिन सबको याद रहेगा मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था तो उसको मुझे करना था इस बार और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
7: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
8: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
7: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश वुमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
8: हम बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के. लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
7: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा. आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
8: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी. उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल yes. है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
7: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट. एम इज LA 2028 सेम. उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन. लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा. In the Asian Games, gold medal winner, and boy oh boy, it was such a proud moment. Parveen, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
9: Thank you, sir.
7: Parveen, gold medal 2026, bronze medal मिला था आपको 23 में, लेकिन हालात हम जानते हैं वो कैसा हुआ था. Bronze मिला था लेकिन whereabouts की failure की वजह से वो medal चला गया. उसके बाद आप लंबे समय तक आप ring में आए नहीं. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
9: सो जो लास्ट टाइम मैंने ब्रोंज मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
7: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच या कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
9: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
7: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
9: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स कि हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
7: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
9: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ, और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो लाइक वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए।
7: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट। आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे, मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग
9: तो
7: करेंगे?
9: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए, और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल। बट ये प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना, अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है, और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है।
7: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल। मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको, एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। सो देयर वी हैव इट फोक्स।
3: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
10: You are watching India Today.

भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लवलीना। तो लवलीना, बर्थडे पे गोल्ड, 2023 में जो सिल्वर मेडल था वो गोल्ड में चेंज हुआ, एंड आपने मैरी कॉम और परवीन, उनके साथ आप एक इलस्ट्रियस लिस्ट में हो एशियन गेम्स के बॉक्सिंग में। तो ये क्या सबसे एक ड्रीम टूर्नामेंट रहा है आपके लिए?
1: हाँ, ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन, सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा। और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था। और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार। और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई।
0: लवली ना, ऐसा क्या बदल गया ये 1-2 सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
1: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है। इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है। एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है। और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं।
0: लवली ना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा है इट वाज अ गोल्डन स्वीप। यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में। तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
1: हाँ, बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है, पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, और उसी वजह से निकल के आ रहा है। जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है, हाँ गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था, तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं। और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, SAAI है, BFI है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं।
0: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28, आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
1: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ। ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है। 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ, और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस।
0: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट, एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवली ना बोरगोइन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन। आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा इन द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर, एंड बॉय ओ बॉय इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट। परवीन, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू सर।
0: परवीन, गोल्ड मेडल 2026, ब्रॉन्ज मेडल मिला था आपको 23 में, लेकिन हालात हम जानते हैं वो कैसा हुआ था। ब्रॉन्ज मिला था लेकिन वेयर अबाउट्स की फेलियर की वजह से वो मेडल चला गया, उसके बाद आप लंबे समय तक आप रिंग में आए नहीं। जब इतना सब कुछ हुआ है,

0: क्या चल रहा था आपके मन में और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
1: सो योर लास्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल जीता था, वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
0: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
1: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर वन थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
0: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
1: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स कि हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
0: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
1: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ, जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ, और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है. तो लाइक वो मेडल काफ़ी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
0: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट, आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं है तुरंत आप ट्रेनिंग
1: तो
0: करेंगे?
1: नहीं, मतलब 2-3 दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल.
1: अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल. बट यह प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना. अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है, और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे, तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है.
0: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल. मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए. सो देयर वी हैव इट फोक्स.
2: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
3: You are watching India Today.

हारने पर जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस के डीएनए में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है, ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है, ये लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा करना है, ये देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है। ये कैसी बात करती है कांग्रेस? कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक, और हार जाए तो चुनाव आयोग खराब। आखिर कर्नाटक में कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, हिमाचल में कैसे जीते? उस दौर को याद करें जब केवल प्रधानमंत्री कांग्रेस चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर देते थे कांग्रेस के जमाने में। मैं फिर कहना चाहता हूं, कांग्रेस खतरनाक खेल खेल रही है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की। हार जाए तो संवैधानिक संस्थाएं गलत है, व्यवस्थाएं गलत है, उसको ध्वस्त कर दो, तहस नहस कर दो, देश को अराजक बना दो, ये पाप है, पाप। लेकिन देश की जनता इस पाप का जवाब वोट से बार बार देती रहेगी, कांग्रेस के नापाक इरादे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।

कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक भी शब्द, एक भी पोस्ट और एक भी प्रेस वक्तव्य कैबिनेट स्मित मछार के लिए न आना यह सवाल खड़ा करता है कि प्रथम परिवार की राजमाता श्रीमती सोनिया जी, जिनकी आंखों में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू थे, उनकी आंखों में करुणा का एक स्वर कैप्टन स्मिथ के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो राजकुमारी जो हाथ में फिलिस्तीन का बैग लेकर जाती थी, उस बैग में से संवेदना का रूमाल निकलकर नहीं आ रहा है। और वो बिगड़े दिल शहजादा राहुल गांधी जी, वो बिगड़ा दिल शहजादा जो 19 अक्टूबर 2023 को गाजा के ऊपर इस कदर गमजदा था कि वो ट्वीट करने से लेके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्तावों से लेके समाचार पत्रों में आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, वो गाजा पर गमजदा शहजादा लगता है वोट बैंक से इस कदर खौफजदा हो गया है कि उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को बहुत गंभीरता से कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण को देखना चाहिए। अफजल गुरु को हालात का मारा कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कहने वाले, तमाम संवेदनाओं के वह तत्व और बटाला हाउस इनकाउंटर पर आंखों में आंसू बहाने वाले लोगों के मुंह से कैप्टन स्मिथ मछार के इस शौर्यपूर्ण और अपने प्राणों को संकट में डालकर इतने लोगों के प्राण बचाने वालों के लिए कोई एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व से इसका सीधा जवाब चाहिए।

0: to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: टीवी पर जैसा आपने देखा, और बाद में जब खबरें सामने आई कि उनका शौर्य, शौक के साथ शौर्य भी आपने उसका देखा, क्या लगा आपको? भांजे पर कितना गर्व रहा?
1: बहुत एकदम गर्व।
0: आपकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं। आप जब बोल रहे थे तब आप बड़े भावुक हो रहे थे, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपके भांजे है वो, और भांजे ने इतना कमाल किया है कि पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड जो है आज उनके गुणगान गा रहा है।
1: सर, बहने और भांजे, भांजा अपने हिंदू में सबसे सर्वोपरि है। आज भी बोले जाता है कि एक भांजे को खाना खिला दो आप तो पूरे ब्राह्मण को खाना खिलाने बराबर है। और भांजे को ये कंडीशन हो जावे तो बट नेचुरली हम भावुक हो जाएंगे। और भांजे का जो शौर्य है उसके सामने आज कुछ भी कहो तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
2: मुझे तो बहुत गर्व है उसके लिए कि उसने इतना बड़ा पराक्रम किया, और उसकी हिम्मत और उस शौर्य की दाद सारा दुनिया दे रही है, और हम भी वही कर रहे हैं। बस इतनी प्रार्थना है भगवान से कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, उसकी स्पीडी रिकवरी हो जाए और घर पे आ जाए। हमें बहुत संतुष्ट है कि वो इतनी बड़ी दुर्घटना से बाहर आया अपनी हिम्मत से, और ये हिम्मत उसको भगवान ने ही दी, और वो हमेशा खुश रहे। वो अच्छा, सबसे बड़ा हनुमान जी का भक्त है वो।
1: उस देव का आशीर्वाद ही है, क्योंकि उसने इंटरव्यू आया था कि बोले मैं जब ये लड़ाई लड़ रहा था तब मेरे मन में ही हनुमान चालीसा मैं पढ़ रहा था। यानी इतना अटूट विश्वास उसका हनुमान जी पे है, यानी उनके माँ बाप के, उसके संस्कार, ये सब धैर्य। यानी उसने वो जो इंसिडेंट हुआ वो माइक्रो सेकंड्स में उसने जो डिसीजन लिए वो सही साबित हुआ, और उन्होंने इतने लोगों को बचाया, ये एक अपने आप में एक मिरेकल है।

0: confuse a bit of a wind getting trapped or a bit of a gastric thing to discomfort? Like, how do I know this is a heart-related issue or this is a gut-related issue?
1: Very important. And in fact, both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks, and people are damaging their heart thinking कि वो गैस थी और शायद वो राजमा खा लिए थे रात को या मैं बाहर खाने चले गए थे और पूरी रात वो गैस को समझते रहे, डाइजिन खाते रहे. बाय द टाइम दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल, देयर हार्ट इज बैडली डैमेज्ड बिकॉज़ 8 to 10 आवर्स हैव पास्ड बाय. दिस इज द वेरी राइट पॉइंट यू आस्क. मैं तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं चाहता बिकॉज द कॉमनेस्ट सिम्टम इज अ प्रेशर ऑन द चेस्ट विच गोज डाउन द आर्म व्हेन यू एक्सरसाइज. इट कैन गो अप ऑल्सो द नेक. And it goes away when you sit down or stop in the next 5 minutes.
0: Okay.
1: But some people will get actually a gastritis. Jalan si ho rahi hai. Gas si lagti hai mere ko chalne mein. But main ruk jata hoon aur do Digine kha leta hoon to theek ho jati. Don't. Anything which is coming on exercise, including breathlessness, including pain even in the back on exercise, pain in the jaw on exercise and brisk walking, should not be ignored because exercise related any form of discomfort including gas is likely to be heart problem. Ye jo gas wali feeling hai na, that also constitutes at least 20% to 15 to 20% heart attack. So ye bhi ek bahut important message hai ki agar wo gas unusual hai to a person जिसको कभी ये एसिडिटी होती नहीं थी, या आपने एक डाइजीन की टैबलेट ली और 15-20 मिनट में एक आधे घंटे में रिलीफ नहीं मिली, प्लीज गो टू द हॉस्पिटल. एक ECG जरूर करा लें. अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस ना करते रहें बिकॉज ECG से ही हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाता है. हार्ट अटैक से बचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट डैमेज हो गया तो हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है. सो डोंट टेक दीज डिसीजंस योरसेल्फ.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

हारने पर जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस के डीएनए में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है, ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है, ये लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा करना है, ये देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है। ये कैसी बात करती है कांग्रेस? कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक, और हार जाए तो चुनाव आयोग खराब। आखिर कर्नाटक में कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, हिमाचल में कैसे जीते? उस दौर को याद करें जब केवल प्रधानमंत्री कांग्रेस चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर देते थे कांग्रेस के जमाने में। मैं फिर कहना चाहता हूं, कांग्रेस खतरनाक खेल खेल रही है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की। हार जाए तो संवैधानिक संस्थाएं गलत है, व्यवस्थाएं गलत है, उसको ध्वस्त कर दो, तहस नहस कर दो, देश को अराजक बना दो, ये पाप है, पाप। लेकिन देश की जनता इस पाप का जवाब वोट से बार बार देती रहेगी, कांग्रेस

0: जो करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक भी शब्द, एक भी पोस्ट और एक भी प्रेस वक्तव्य कैबिनेट स्मित मछार के लिए न आना यह सवाल खड़ा करता है कि प्रथम परिवार की राजमाता श्रीमती सोनिया जी, जिनकी आंखों में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू थे, उनकी आंखों में करुणा का एक स्वर कैप्टन स्मिथ के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो राजकुमारी जो हाथ में फिलिस्तीन का बैग लेकर जाती थी, उस बैग में से संवेदना का रूमाल निकलकर नहीं आ रहा है। और वो बिगड़े दिल शहजादा राहुल गांधी जी, वो बिगड़ा दिल शहजादा जो 19 अक्टूबर 2023 को गाजा के ऊपर इस कदर गमजदा था कि वो ट्वीट करने से लेके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्तावों से लेके समाचार पत्रों में आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, वो गाजा पर गमजदा शहजादा लगता है वोट बैंक से इस कदर खौफजदा हो गया है कि उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को बहुत गंभीरता से कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण को देखना चाहिए। अफजल गुरु को हालात का मारा कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कहने वाले, तमाम संवेदनाओं के वह तत्व और बटाला हाउस इनकाउंटर पर आंखों में आंसू बहाने वाले लोगों के मुंह से कैप्टन स्मिथ मछार के इस शौर्यपूर्ण और अपने प्राणों को संकट में डालकर इतने लोगों के प्राण बचाने वालों के लिए कोई एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व से इसका सीधा जवाब चाहिए।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: So sorry.
2: आटो हजरात और खवातीन जरा मुआयदा फरमाए तो खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए। हजरात यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए। हाँ, तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए, और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, झिझकिए मत, खुद को बीबी का गुलाम कीजिए, और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है। और फरमाइए, इसी से खत्म मतलब खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार, घर सुबह दोपहर शाम आई लव यू बोलकर करोगे मोहब्बत का इजहार। यू सी सी आदावर जो है।

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: Hello and welcome. You are watching In the Club and I am Susan. Vijay Salgaonkar is back and this time the stakes are higher than ever. Ajay Devgan returns as the iconic character in the much-awaited concluding chapter of the Drishyam franchise. Packed with suspense, twists and familiar faces, the film has opened to a strong response from audiences. So has Vijay Salgaonkar finally met his match? Here's a closer look at the film's box office journey.
1: ने हर किसी को ये कहानी अपने नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। तभी तो ये कहानी में वो गलत होके भी हीरो है और हम सही होके भी विलेन।
2: विजय सालगांवकर is back. And this time, the box office is witnessing a mystery of its own. Drishyam 3, the conclusion has struck gold at the domestic box office.
3: अब ये एक खेल बन चुका है, जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी।
2: Crossing 100 crore mark within just 2 days of its theatrical release.
4: ना पड़े, तो आपके हिसाब से इस बार क्या करेगा विजय?
5: विजय क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? ये या तो विजय जानता है, या अल्लाह जानता है।
3: उनके पास strong evidence है। किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं लोग?
6: वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो घबराने की कोई बात ही नहीं।
2: The much-awaited thriller has opened to a thunderous response, proving that the audience's fascination with the Salgaonkar family is far from over.
7: अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा।
8: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिमिनल है, सरकार तुझे इनाम देना चाहती है। तुझे मिलने कौन आया है? एसपी क्राइम ब्रांच।
9: मैं आदमी नहीं, निशानी हूं। जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसका खराब टाइम शुरू।
2: अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द फिल्म हैज कलेक्टेड 62 करोड़ नेट इन इंडिया ऑन इट्स ओपनिंग डे, फॉलोड बाय 53.50 करोड़ ऑन डे टू।
9: मन से तो झूठ बोल लेता है पर दिल सब सच बता देता है। क्या मैं एसपी क्राइम ब्रांच हूं? हाँ, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। तेरे साथ ट्राई करते हैं। क्या तूने बॉडी सेवियो से ली थी?
2: Starring Ajay Devgan in the lead, the latest installment marks the concluding chapter of the Hindi Drishyam franchise.
10: हार्ट अटैक लो हो जाए।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है। खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है।
11: One kiss, one family, one person.
2: The actor reprises his much-loved role as Vijay Salgaonkar alongside Jaideep Alawat, Tabu, Shreya Saran, Ishita Datta, Mrunal Jadhav and Prakash Raj in pivotal roles.
3: जब तक कोई उसकी फैमिली को धमकी ना दे, वरना घसीटना तो दूर की बात। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो साधारण आदमी क्या से क्या बन सकता है। फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, किसी भी वर्दी में खड़ा हो।
2: Interestingly, the Hindi film arrived in theaters a few months after Mohanlal's Malayalam language Drishyam 3, the original film in the franchise, which took a different narrative route.
12: I want his full file on my desk as soon as possible.
2: The Hindi Drishyam franchise began in 2015 with Nishikant Kamath's directorial, which emerged as a major success and established Vijay Salgaonkar as one of Hindi cinema's memorable characters. The film's popularity paved the way for Drishyam 2, which arrived in 2022 under the direction of Abhishek Pathak, following Kamath's death.
13: He knew well that the police will always find the body of that lash. And that's why he started his work to change his identity.
2: With a powerful ensemble, familiar faces and a gripping narrative, Drishyam 3, the conclusion has made a strong start.
14: Your Honor, ये पूरा केस मनगढ़ंत, जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से,
2: ब्रिंगिंग विजय सालगांवकर्स मच एंटिसिपेटेड स्टोरी टू इट्स फाइनल चैप्टर।
15: मुस्कुराता
2: एंटरटेनमेंट ब्यूरो इंडिया टुडे।
8: विजय का ना टाइम अच्छा चल रहा है, नहीं तो अपने थिएटर में नहीं हमारे जेल में बैठा।
0: दिलजीत दोसांझ इज ब्रिंगिंग द ऑरा बैक होम। आफ्टर कॉन्करिंग इंटरनेशनल स्टेजेस, द पंजाबी सुपरस्टार इज नाउ टेकिंग हिज ग्लोबल स्पेक्टेकल अक्रॉस इंडिया विद अ मैसिव 7 सिटी टूर। फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, मुंबई टू बेंगलुरु, ऑरा प्रॉमिसेस म्यूजिक, भांगड़ा एंड ब्लॉकबस्टर एनर्जी। Take a look at this special report.

0: टीवी पर जैसा आपने
1: हाँ
0: देखा, और बाद में जब खबरें सामने आई कि उनका शौर्य, शौक के साथ शौर्य भी आपने उसका देखा, क्या लगा आपको भांजे पर कितना गर्व रहा?
1: बहुत एकदम गर्व।
0: आपकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं।
1: हाँ
0: आप जब बोल रहे थे तब आप बड़े भावुक हो रहे थे, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपके भांजे है वो, और भांजे ने इतना कमाल किया है कि पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड जो है आज उनके गुणगान गा रहा है।
1: सर, बहने और भांजे, भांजा अपने हिंदू में सबसे सर्वोपरि है। आज भी बोले जाता है कि एक भांजे को खाना खिला दो आप तो पूरे ब्राह्मण को खाना खिलाने बराबर है। और भांजे को ये कंडीशन हो जावे तो बट निचले हम भावुक हो जाएंगे। और भांजे का जो शौर्य है उसके सामने आज कुछ भी कहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
2: मुझे तो बहुत गर्व है उसके लिए कि उसने इतना बड़ा पराक्रम किया, और उसकी हिम्मत और उस शौर्य की दाद सारा दुनिया दे रही है, और हम भी वही कर रहे हैं। बस इतनी प्रार्थना है भगवान से कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, उसकी स्पीडी रिकवरी हो जाए और घर पे आ जाए। हमें बहुत संतुष्ट है कि वो इतनी बड़ी दुर्घटना से बाहर आया अपनी हिम्मत से, और ये हिम्मत उसको भगवान ने ही दी, और वो हमेशा खुश रहे। वो अच्छा, सबसे बड़ा हनुमान जी का भक्त है वो।
1: उस देव का आशीर्वाद ही है, क्योंकि उसने इंटरव्यू आया था कि बोले मैं जब ये लड़ाई लड़ रहा था तब मेरे मन में ही हनुमान चालीसा मैं पढ़ रहा था। यानी इतना अटूट विश्वास उसका हनुमान जी पे है, यानी उनके माँ बाप के, उसके संस्कार, ये सब धैर्य। यानी उसने वो जो इंसिडेंट हुआ वो माइक्रो सेकंड्स में उसने जो डिसीजंस लिए वो सही साबित हुआ, और उन्होंने इतने लोगों को बचाया, ये एक अपने आप में एक मिरेकल है।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जीत तो महत्वपूर्ण ही है, गठबंधन पानी की तरीके से एक है, सीटों की संख्या पर कोई झगड़ा नहीं, 403 की 403 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सिंबल जिस क्षेत्र में जो जीत सकता होगा उस पार्टी का सिंबल होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें तो ये तो एक अच्छा बयान है श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी तो बकवास करती है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, खीजी हुई है, पिछले 10 साल का हिसाब नहीं देना पड़े उनको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्लज्ज टिप्पणियां कर रही है, बिलो द बेल्ट वार कर रही है।
1: अखिलेश यादव लगातार अपने एक एक कदम से कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत बताने का काम कर रहे हैं। पहले रायबरेली से यात्रा की शुरुआत करते हैं, फिर राज्यसभा के सदस्य घोषित करते समय कांग्रेस पार्टी को हैसियत दिखाने का काम करते हैं, और अब सोशल मीडिया से हमला बोल रहे हैं, हैसियत बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हैसियत सीट जीतने की जितनी है उतनी ही डिमांड करे, और कांग्रेस लगातार 150 सीट 200 सीट की डिमांड कर रही है। पता चल रहा है कि इस गठबंधन में कितना अहंकार है, कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, और इसीलिए इस गठबंधन में गांठें बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। ये गठबंधन स्वार्थ के आधार पर है, कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, इसलिए इस गठबंधन की ये दुर्गति है।

इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को हिंदू हिंदू करते रहे, ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया, उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी। महात्मा गांधी वो शख्सियत थे जिन्होंने सनातन धर्म और सनातनी परंपराओं का सम्मान किया है।

0: हर आदमी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। आज उसी की हत्या हो रही है, कांग्रेस कह रही नहीं समझ में आ रहा है, जनता सड़कों पे कह रही है तब भी नहीं जाग रहे हैं ये लोग। इन लोगों के बयानात के बाद, इन लोगों के इंटरप्रिटेशन के बाद ज्ञानेश कुमार जी को एक पल पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी और अमित शाह, अब तो जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगो या जहां भी तुम्हारा टंगा हो झोला उठाओ और जाओ।
1: जब इस पर चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो जिस संवेदनशीलता से हो रही थी उसका घोर अभाव देखा हमने ज्ञानेश जी की कार्य पद्धति में, जिसका पूरा खुलासा अब पब्लिक डोमेन में है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जस्टिस भुइयां का कि इस काले अंधे दौर में ऐसी आवाजें रोशनी का होना महसूस कराती है।

0: open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: मुद्दों को उठाना, अधूरे में उसको छोड़ देना, कभी ईवीएम तो कभी एसआईआर को लेकर जनता के बीच में सिर्फ भ्रम फैलाना, हकीकत है लोग आपको नकार रहे हैं। ये बात सत्याग्रह से आपको नहीं समझ में आएगी, ये बात मंथन से आपको समझ में आएगी। आप चुनाव जीत जाते हैं तो वहां का एसआईआर सही रहता है, वहीं अगर विपक्ष, अगर हम लोग के सांसद जीतते हैं तो गलत हो जाता है। तो सत्याग्रह सोच अच्छी है, बट सत्याग्रह का पालन भी करें।
1: राहुल गांधी जी के ऊपर में कांग्रेस पार्टी के लोग कितना विश्वास करते हैं, किस तरीके से उनके दिखाए गए निर्देशों पर चलते हैं, वो तो पूरे दुनिया देख रही है। जहां तक उन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म से जोड़ने की बात की कही है, तो इनके पास में और कोई चारा नहीं है। ये जो प्रदेश का और क्षेत्रीय पार्टियों का या फिर जो कहते हैं छोटे छोटे समूहों का, उन्हीं विषयों को लेकर के ये चलने वाले लोग हैं, इनकी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी.
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना.
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन.

0: रहे हैं कांटों का ताज है, बहुत देर है, दुरुस्त है या बहुत देर होगी हुजूर आते आते?
1: देखिए समय कभी, जब जो चीज होनी होती है वो समय पर ही होती है, ये इसी समय के लिए निर्धारित था। मैं

0: में कांटों का ताज है, बहुत देर आए दुरुस्त है या बहुत देर होगी हुजूर आते आते?
1: देखिए समय कभी, जब जो चीज होनी होती है वो समय पर ही होती है, ये इसी समय के लिए निर्धारित था। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस वक्त ये जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी के साथ चुनौतियां भी आती हैं और मैं चुनौतियों से कभी डरी नहीं हूं, चुनौतियां स्वीकार भी की हैं और उन्हें परास्त भी किया। जो राहुल गांधी जी का मिशन 27 है उसको मुझे पूरा करना है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता में मुझे विश्वास जगाना है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, एक परिवार की तरह उनके साथ खड़ी है। हर कार्यकर्ता के मान सम्मान और उसके विश्वास को मुझे और सशक्त करना है, यही मेरा कर्तव्य है और मैं इस जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगी।
0: देखिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि नया पद मिलता है और अभी आज पहला दिन है इनका, देश की राजधानी दिल्ली आई है तो पहले अवध और उस तरफ पूर्वांचल की लेग की बधाइयां कंप्लीट हुई। अभी यहाँ पे काफी आप देखिए कि कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है और काफी गुलदस्ते और फूल भी आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कांटों का सवाल हम लोग की तरफ से आता रहेगा। और सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो रायबरेली से भी लड़ने को तैयार नहीं थे, अखिलेश यादव ने हिम्मत दी तब कहीं लड़ पाए वो, तो ऐसे में सीट शेयरिंग की बात कहाँ चली आती है 200 सीटों की?
1: देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार, रायबरेली अमेठी उनके लिए घर है, उनका परिवार है। आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों से उनकी दादी वहां से का प्रतिनिधित्व किया, उनके बाबा ने प्रतिनिधित्व किया, तो अमेठी रायबरेली उनके लिए घर है, वहां पे उनको किसी की पहचान कराने की किसी को भी आवश्यकता नहीं।

0: open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: हर आदमी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। आज उसी की हत्या हो रही है। कांग्रेस कह रही नहीं समझ में आ रहा है, जनता सड़कों पे कह रही है तब भी नहीं जाग रहे हैं ये लोग। इन लोगों के बयानात के बाद, इन लोगों के इंटरप्रिटेशन के बाद ज्ञानेश कुमार जी को एक पल पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी और अमित शाह, अब तो जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगो या जहां भी तुम्हारा टंगा हो झोला उठाओ और जाओ।
4: जब इस पर चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो जिस संवेदनशीलता से हो रही थी उसका घोर अभाव देखा हमने ज्ञानेश जी की कार्य पद्धति में, जिसका पूरा खुलासा अब पब्लिक डोमेन में है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जस्टिस भुइयां का कि इस काले अंधे दौर में ऐसी आवाजें रोशनी का होना महसूस कराती है।
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: standing crops withering under heat, a common sight in Marathwada. 265 talukas in Maharashtra are declared drought hit. This year, over 650 farmers have died by suicide across Marathwada region. Farmers are in distress. They are demanding immediate relief. Some of these villages were hit by floods last year. Farmers claim they are yet to get the relief announced then.
1: KYC bhi karke 1.5 mahine ke baad zyada din hue KYC bhi karke pehle list jab jari ho gayi uske dusre din maine KYC ki
2: karza jo maaf hua kuch nahi aapko
1: paisa nahi ek rupaya nahi abhi tum puch sakte ja ke armale ke SBI branch mein
3: korab bah gaya tha uska 1 rupaya tak nahi mila hai ye veer bolte hain wo gir gayi hai
2: kua gir gaya aapka
3: gir gaya uska 1 rupaya nahi mila aur pura wasi taluka क्रॉप इंश्योरेंस का 940 रुपए से बीमा मिल गया है और जो कि मुख्यमंत्री ने जाहिर किया था कि 17,500 रुपए देंगे 17,500 भी नहीं 17,000 भी नहीं कुछ नहीं खाली 940 रुपए आया है
4: कुछ भी नहीं मिली पंडित
2: थोड़ा भी नहीं इनको तो 940 है आपको तो कितना है
4: एक रुपया नहीं भगा है उसका एक रुपया पर नहीं आया
0: इन नांदेड फार्मर्स आर सेलिंग देयर कैटल
5: ये 2 लाख की जोड़ी है लाख को सवा लाख को मांग रही
6: क्यों क्यों बेच रहे आप
5: पानी की और क्या इसकी खाने की सोई नहीं ना चारी
0: Grappling with the monsoon deficit, the Maharashtra government has announced a 10% cut in water

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: It gives us incredible pleasure to welcome Lovlina Borgohain, gold medalist and belated happy birthday, Lovlina. So, Lovlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To, ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
1: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था. सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन. सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा. और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था. और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार. और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
0: लवली ना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
1: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक

जिनका नहीं रहता है ना, मेरा 15 साल हो गया अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हो, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है। एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हुआ। हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज्यादा सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है, और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं।

0: हर आदमी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। आज उसी की हत्या हो रही है। कांग्रेस कह रही नहीं समझ में आ रहा है, जनता सड़कों पे कह रही है तब भी नहीं जाग रहे हैं ये लोग। इन लोगों के बयानात के बाद, इन लोगों के इंटरप्रिटेशन के बाद ज्ञानेश कुमार जी को एक पल पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी और अमित शाह, अब तो जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगो या जहां भी तुम्हारा टंगा हो झोला उठाओ और जाओ।
1: जब इस पर चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो जिस संवेदनशीलता से हो रही थी उसका घोर अभाव देखा हमने ज्ञानेश जी की कार्य पद्धति में, जिसका पूरा खुलासा अब पब्लिक डोमेन में है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जस्टिस भुइयां का कि इस काले अंधे दौर में ऐसी आवाजें रोशनी का होना महसूस कराती है।

0: Hello and welcome. You are watching In the Club and I am Susan. Vijay Salgaonkar is back and this time the stakes are higher than ever. Ajay Devgan returns as the iconic character in the much awaited concluding chapter of the Drishyam franchise. Packed with suspense, twists and familiar faces, the film has opened to a strong response from audiences. So has Vijay Salgaonkar finally met his match? Here's a closer look at the film's box office journey.
1: ने हर किसी को ये कहानी अपने नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। तभी तो ये कहानी में वो गलत होके भी हीरो है और हम सही होके भी विलेन।
2: विजय सालगांवकर is back. And this time, the box office is witnessing a mystery of its own. Drishyam 3, the conclusion has struck gold at the domestic box office.
3: अब ये खेल बन चुका है, जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी।
2: Crossing 100 crore mark within just 2 days of its theatrical release.
4: ना पड़े, तो आपके हिसाब से इस बार क्या करेगा विजय?
5: विजय क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? ये या तो विजय जानता है, या अल्लाह जानता है।
3: उनके पास strong evidence है। किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं लोग?
6: वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो घबराने की कोई बात ही नहीं।
2: The much awaited thriller has opened to a thunderous response, proving that the audience's fascination with the Salgaonkar family is far from over.
7: अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा।
8: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिमिनल है, सरकार तुझे इनाम देना चाहती है। तुझे मिलने कौन आया है? एसपी क्राइम ब्रांच।
9: मैं आदमी नहीं, शनि हूं, जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसको खराब टाइम शुरू।
2: अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द फिल्म हैज कलेक्टेड 62 करोड़ नेट इन इंडिया ऑन इट्स ओपनिंग डे, फॉलोड बाय 53.50 करोड़ ऑन डे टू।
9: से तो झूठ बोल लेता है पर दिल सब सच बता देता है। क्या मैं एसपी क्राइम ब्रांच हूं? हाँ, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। तेरे साथ ट्राई करते हैं। क्या तूने बॉडी सेवियो से ली थी?
2: Starring Ajay Devgan in the lead, the latest installment marks the concluding chapter of the Hindi Drishyam franchise.
10: हार्ट अटैक लो हो जाए।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है। खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है।
11: One kiss, one family, one person.
2: The actor reprises his much-loved role as Vijay Salgaonkar alongside Jaideep Alawat, Tabu, Shreya Saran, Ishita Datta, Mrunal Jadhav and Prakash Raj in pivotal roles.
3: जब तक कोई उसकी फैमिली को धमकी ना दे, वरना घसीटना तो दूर की बात। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो साधारण आदमी क्या से क्या बन सकता है। फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, किसी भी वर्दी में खड़ा हो।
2: Interestingly, the Hindi film arrived in theaters a few months after Mohanlal's Malayalam language Drishyam 3, the original film in the franchise, which took a different narrative route.
12: I want his full file on my desk as soon as possible.
2: The Hindi Drishyam franchise began in 2015 with Nishikant Kamath's directorial, which emerged as a major success and established Vijay Salgaonkar as one of Hindi cinema's memorable characters. The film's popularity paved the way for Drishyam 2, which arrived in 2022 under the direction of Abhishek Pathak, following Kamath's death.
13: Hero अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस कभी न कभी उस लाश को जरूर ढूंढ लेगी, और इसीलिए उसने उसी दिन से अपनी तंतीर को बदलने का काम शुरू कर दिया था।
2: With a powerful ensemble, familiar faces, and a gripping narrative, Drishyam 3, the conclusion has made a strong start.
14: Your Honor, ये पूरा केस मनगढ़ंत, जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से,
2: ब्रिंगिंग विजय सालगांवकर मच एंटिसिपेटेड स्टोरी टू इट्स फाइनल चैप्टर।
15: मुस्कुराता
2: एंटरटेनमेंट ब्यूरो इंडिया टुडे।
8: विजय का ना टाइम अच्छा चल रहा है, नहीं तो अपने थिएटर में नहीं हमारे जेल में बैठा हो।
0: दिलजीत दोसांझ इज ब्रिंगिंग द ऑरा बैक होम आफ्टर कॉन्करिंग इंटरनेशनल स्टेजेस। The Punjabi superstar is now taking his global spectacle across India with a massive seven-city tour. From Delhi to Ahmedabad, Mumbai to Bengaluru, Aura promises music, Bhangra and blockbuster energy. Take a look at this special report.

0: India's campaign at the 2026 Asian Games ended with the nation's athletes having won a total of 85 medals. However, it's worth noting that Nari Shakti has been a key reason behind India's showing in the multi-sporting event. Here's a special report on how Indian women athletes have dominated in the Asian Games.
1: Athletes saved their best for the last at the Asian Games.
2: A gold medalist.
1: Winning 5 gold medals to ensure India ended the tournament with 21 gold medals. And India's golden run was down in no small part to Nari Shakti. With India's women athletes accounting for 11 of those gold medals in the multi-nation sporting event. Even taking into account India's overall medal tally, India's women athletes won the same number of medals as the men, showing how far they've come in the recent times.
2: Because it was gold for Kumkum Mohod.
1: Perhaps the most notable of those gold medals came courtesy of Kumkum Mohod, who won the individual gold medal in recurve archery, a discipline where India has historically struggled.
3: रनी तो बहुत हार्ड वर्किंग रही है अभी तक और अभी भी आगे तो बहुत रहने वाली है 2018 में आर्चरी शुरू की थी उसके बाद मैंने 4 साल इंडियन चलाया और फिर रिकव लिया 4 साल हो गए अभी ये वो खेलते हुए और बीच में तो बहुत डाउनफॉल था मतलब बिल्कुल तीर लगते ही नहीं थे फॉर्म भी नहीं था फिर उसके बाद बहुत डेवलप किया है स्ट्रेंथ में भी बहुत मतलब मेहनत करके सब कुछ
1: It wasn't a one-off either. As before her success in the individual event, Kumkum was part of the side that won the gold in the women's team recurve event as well. She wasn't the only one to spring a surprise by winning gold. Golfer Pranvi Urs ended India's 24-year wait for a gold medal in the sport. And helped India secure silver in the team event.
2: The gold medalist, the first time in the history of the Asian Games, do you have a woman in golf?
4: Savita saves! A victory for this Indian women's hockey team.
1: The Indian women's hockey team also ended a 44-year wait to win gold, beating a strong China side 1-0 in the finale to stand atop the podium.
4: They are the best in the continent.
5: मेरी मम्मी के लिए मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम एवर मेरे को बोला था कि बेटा मैं मेरी बेटी के भी गले में सब जीत के आ रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है तो मैं भी अपनी बेटी के गले में गोल्ड मेडल देखना चाहती हूँ तो मुझे सिर्फ अपने मम्मी दिख रहे थे कि कब मैं चेंजिंग रूम में जाऊँ और अपनी मम्मी को फोन करूँ और कि मम्मी फाइनल वो दिन आ गया तो बट एक एक साथ हिस्ट्री क्रिएट करना देन एलए के लिए क्वालिफाई करना देन मम्मी का सपना पूरा करना तो यकीन ही नहीं हो रहा था
1: And before the men's cricket team sealed gold with a win over Pakistan, the Harmanpreet Kaur-led women's cricket team also defended their gold medal with a dominant win over Sri Lanka.
6: मेरा पहला मेडल है सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी हियर या गर्ल्स डिड वेरी वेल इन द एशिया कप अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट आउट बट नाउ दैट आई एम बैक इन द इंडियन टीम इन द एशियन गेम्स मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज राइट आफ्टर द इंजरी कमिंग बैक एंड प्लेइंग गेम्स इज समथिंग व्हिच आई लव डूइंग आई एम वेरी हैप्पी दैट वी क्रॉस द लाइन
1: At a time when India is pushing to become a serious sporting nation, it is heartening to see that it is the nation's women athletes who are at the forefront of this revolution.
7: And the smiles for all three.
1: Sports Bureau, India Today.
4: They are now champions of Asia.

फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए। हजरत यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए। हाँ, तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए, और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए। मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, झिझकिए मत, खुद को बीवी का गुलाम कीजिए। और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है, और फरमाइए, इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार। अगर सुबह दोपहर शाम आई लव यू बोलकर करोगे मोहब्बत का इजहार, यूसीसी आदावर जो है।

0: India's campaign at the 2026 Asian Games ended with the nation's athletes having won a total of 85 medals. However, it's worth noting that Nari Shakti has been a key reason behind India's showing in the multi-sporting event. Here's a special report on how Indian women athletes have dominated in the Asian Games.
1: Athletes saved their best for the last at the Asian Games.
2: The gold medalist.
1: Winning 5 gold medals to ensure India ended the tournament with 21 gold medals. And India's golden run was down in no small part to Nari Shakti. With India's women athletes accounting for 11 of those gold medals in the multi-nation sporting event. Even taking into account India's overall medal tally, India's women athletes won the same number of medals as the men, showing how far they've come in the recent times.
2: Because it was gold for Kumkum Mohod.
1: Perhaps the most notable of those gold medals came courtesy of Kumkum Mohod, who won the individual gold medal in recurve archery, a discipline where India has historically struggled.
3: रनी तो बहुत हार्ड वर्किंग रही है अभी तक और अभी भी आगे तो बहुत रहने वाली है 2018 में आर्चरी शुरू की थी उसके बाद मैंने 4 साल इंडियन चलाया और फिर रिकव लिया 4 साल हो गए अभी ये वो खेलते हुए और बीच में तो बहुत डाउनफॉल था मतलब बिल्कुल तीर लगते ही नहीं थे फॉर्म भी नहीं था फिर उसके बाद बहुत डेवलप किया है स्ट्रेंथ में भी बहुत मतलब मेहनत करके सब कुछ
1: It wasn't a one-off either. As before her success in the individual event, Kumkum was part of the side that won the gold in the women's team recurve event as well. She wasn't the only one to spring a surprise by winning gold. Golfer Pranvi Urs ended India's 24-year wait for a gold medal in the sport. And helped India secure silver in the team event.
2: The gold medalist, the first time in the history of the Asian Games, do you have a woman in golf?
4: Samita saves! Victory for this Indian women's hockey team.
1: The Indian women's hockey team also ended a 44-year wait to win gold, beating a strong China side 1-0 in the finale to stand atop the podium.
5: They are the best in the continent.
6: मेरी मम्मी के लिए मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम एवर मेरे को बोला था कि बेटा मैं मेरी बेटी के भी गले में सब जीत के आ रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है तो मैं भी अपनी बेटी के गले में गोल्ड मेडल देखना चाहती हूँ तो मुझे सिर्फ अपने मम्मी दिख रहे थे कि कब मैं चेंजिंग रूम में जाऊं और अपनी मम्मी को फोन करूं और कि मम्मी फाइनल वो दिन आ गया तो बट एक एक साथ हिस्ट्री क्रिएट करना देन एलए के लिए क्वालिफाई करना देन मम्मी का सपना पूरा करना तो यकीन ही नहीं हो रहा था
1: And before the men's cricket team sealed gold with a win over Pakistan, the Harmanpreet Kaur-led women's cricket team also defended their gold medal with a dominant win over Sri Lanka.
7: मेरा पहला मेडल है सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी हियर या गर्ल्स डिड वेरी वेल इन द एशिया कप अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट आउट बट नाउ दैट आई एम बैक इन द इंडियन टीम इन द एशियन गेम्स मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज राइट आफ्टर द इंजरी कमिंग बैक एंड प्लेइंग गेम्स इज समथिंग व्हिच आई लव डूइंग आई एम वेरी हैप्पी दैट वी क्रॉस द लाइन
1: At a time when India is pushing to become a serious sporting nation, it is heartening to see that it is the nation's women athletes who are at the forefront of this revolution.
8: And the smiles for all three.
1: Sports Bureau, India Today.
5: They are now champions of Asia.

0: India's campaign at the 2026 Asian Games ended with the nation's athletes having won a total of 85 medals. However, it's worth noting that Nari Shakti has been a key reason behind India's showing in the multi-sporting event. Here's a special report on how Indian women athletes have dominated in the Asian Games.
1: Athletes saved their best for the last at the Asian Games.
2: The gold medalist.
1: Winning 5 gold medals to ensure India ended the tournament with 21 gold medals. And India's golden run was down in no small part to Nari Shakti. With India's women athletes accounting for 11 of those gold medals in the multi-nation sporting event. Even taking into account India's overall medal tally, India's women athletes won the same number of medals as the men, showing how far they've come in the recent times.
2: Because it was gold for Kumkum Mohod.
1: Perhaps the most notable of those gold medals came courtesy of Kumkum Mohod, who won the individual gold medal in recurve archery, a discipline where India has historically struggled.
3: रणनी तो बहुत हार्डवर्किंग रही है अभी तक और अभी भी आगे तो बहुत रहने वाली है. 2018 में आर्चरी शुरू की थी, उसके बाद मैंने 4 साल इंडियन चलाया और फिर रिकव लिया. 4 साल हो गए अभी ये वो खेलते हुए और बीच में तो बहुत डाउनफॉल था, मतलब बिल्कुल तीर लगते ही नहीं थे, फॉर्म भी नहीं था. फिर उसके बाद बहुत डेवलप किया है, स्ट्रेंथ में भी बहुत, मतलब मेहनत करके सब कुछ लाया है.
1: It wasn't a one-off either. As before her success in the individual event, Kumkum was part of the side that won the gold in the women's team recurve event as well. She wasn't the only one to spring a surprise by winning gold. Golfer Pranvi Urs ended India's 24-year wait for a gold medal in the sport and helped India secure silver in the team event.
2: The gold medalist, the first time in the history of the Asian Games do you have a woman in golf.
4: Samita saves! A victory for the Indian women's hockey team.
1: The Indian women's hockey team also ended a 44-year wait to win gold, beating a strong China side 1-0 in the finale to stand atop the podium.
5: They are the best in the continent.
6: मेरी मम्मी के लिए मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम एवर मेरे को बोला था कि बेटा मैं मेरी बेटी के भी गले में सब जीत के आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी अपनी बेटी के गले में गोल्ड मेडल देखना चाहती हूँ. तो मुझे सिर्फ अपने मम्मी दिख रहे थे कि कब मैं चेंजिंग रूम में जाऊँ और अपनी मम्मी को फोन करूँ और कि मम्मी फाइनल वो दिन आ गया. तो बट एक साथ हिस्ट्री क्रिएट करना, देन एलए के लिए क्वालिफाई करना, देन मम्मी का सपना पूरा करना, तो यकीन ही नहीं हो रहा था.
1: एंड बिफोर द मेंस क्रिकेट टीम सील्ड गोल्ड विद अ विन ओवर पाकिस्तान, द हरमनप्रीत कौर लेड विमेंस क्रिकेट टीम आल्सो डिफेंडेड देयर गोल्ड मेडल विद अ डोमिनेंट विन ओवर श्रीलंका.
7: मेरा पहला मेडल है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी हियर. या गर्ल्स डिड वेरी वेल इन द एशिया कप, अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट आउट, बट नाउ दैट आई एम बैक इन द इंडियन टीम इन द एशियन गेम्स, मैं बहुत खुश हूँ. बिकॉज राइट आफ्टर द इंजरी, कमिंग बैक एंड प्लेइंग गेम्स इज समथिंग व्हिच आई लव डूइंग. आई एम वेरी हैप्पी दैट वी क्रॉस द लाइन.
1: At a time when India is pushing to become a serious sporting nation, it is heartening to see that it is the nation's women athletes who are at the forefront of this revolution.
8: And the smiles for all three.
1: Sports Bureau, India Today.
5: They are now champions of Asia.